0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना

श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत यूक्रेन के शहीदों की माताओं की कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं। हर शहीद सैनिक के नाम के पीछे सिर्फ एक उपलब्धि नहीं, बल्कि उनके जीवन, विश्वास, परिवार और प्यार की कहानी भी है, जो हमेशा रह जाती है। एक मानवता की कहानी, एक साहस एवं आशा की कहानी। यह यूक्रेनी सैनिक रोमन कोमलिको की मां विक्टोरिया कोमलिको की गवाही है। रोमन कोमलिको 16 मार्च 2022 को मारियोपोल की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। जब रोमन की मौत हुई तो वह सिर्फ 20 साल का था। 20 साल की उम्र कम लगती है, लेकिन एक जागरूक इंसान बनने, विकसित होने और जीवन को गहराई से समझने के लिए उम्र सबसे जरूरी चीज नहीं होती। आप 20 साल की उम्र में भी आध्यात्मिक रूप से परिपक्व इंसान बन सकते हैं। सिद्धांत और विचार ही व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। जब रोमन 2 साल का था तो एक दिन वह अपनी माँ के साथ कमरे में खेल रहा था। माँ किचन गए, रास्ते में शीशे पर खुद को देखा और सोचा, जब मेरा बेटा 20 साल का होगा तो मैं कैसी होंगी? अगर तब उससे पूरी सच्चाई मालूम होती कि क्या होने वाला है तो उसका बुरा हाल होता। लेकिन आज वह अपने बेटे को धन्यवाद देती है, जिसने उसे सिखाया कि इज्जत, सम्मान, सिद्धांत और विश्वास क्या होते हैं। ये वे चीजें हैं जो हमें असली इंसान बनाती हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कितनी लंबी जिंदगी जीते हैं। यह समझना जरूरी है कि दुनिया सिर्फ मैं में बंद नहीं है। हर किसी को खुद के लिए जवाब देना होगा। मैं कौन हूँ? मैं किस तरह का नागरिक हूँ? मैंने लोगों के लिए क्या किया है और मेरे कामों का आसपास रहने वालों पर क्या असर पड़ता है? यूक्रेन के लिए अपनी जान देने वाले हर एक व्यक्ति ने सबसे बढ़कर अपने परिवार, अपनी जमीन, अपने पुरखों और उन सभी चीज़ों की रक्षा की है जो उन्हें प्यारी थी। इसलिए विक्टोरिया के लिए हर शहीद सैनिक उसके बेटे के समान है और रोमन की तरह वे सभी को सम्मान एवं कृतज्ञता के साथ याद रखती हैं। उन्हें पता है कि वे यही चाहेंगे और कहेंगे, माँ यही सही है। हीरो की माँ हर सैनिक की माँ होती है। उनके कारनामे को जानकर और उनकी याद को संभालकर वह समझती है कि वह हर योद्धा की माँ है। विक्टोरिया अपने बेटे के बारे बताते हुए कहती हैं, सैनिक की सेवा में आने से पहले मेरे बेटे को इतिहास में बहुत दिलचस्पी थी। उसे दुनिया के इतिहास और यूक्रेन के इतिहास दोनों में बहुत रुचि थी। वह बहुत चिंतन करता था। 9वीं क्लास में उसने मुझसे कहा कि वह कॉलेज जाएगा, लेकिन पहले वह अपने देश की रक्षा करेगा। उसने इसके लिए खुद को आध्यात्मिक एवं शारीरिक रूप से तैयार किया। वह अक्सर कहा करता था, माँ, हमारे देश में युद्ध जारी है, पर लोग इतने चैन से क्यों रहते हैं? उसे इस बात से दुख होता था कि 2014 से चल रहा युद्ध कई लोगों के लिए आम बात हो गई थी। 11वीं क्लास के बाद उसने कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन सैनिक दल अजोव ब्रिगेड के लिए चयन में भाग लिया। विक्टोरिया मन ही मन उम्मीद कर रही थी कि वह पास ना हो। वास्तव में कोई भी माँ नहीं चाहेगी कि उसका बेटा जंग के बीच हो। 20 उम्मीदवारों से सिर्फ 2 ही टेस्ट पास कर पाए। गंभीर शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और मेडिकल टेस्ट के बाद उसे तुरंत मारियोपोल में सेवा के लिए भेज दिया गया। उस समय मारियोपोल में पहले से ही लड़ाई चल रही थी। उसने इसके बारे में कुछ नहीं बताया। कभी कभी वह 1 हफ्ते के लिए गायब हो जाता। एक बार जब उसकी माँ बहुत घबरा गई तो उसने स्वीकार किया कि बड़े पैमाने पर हमले के लगभग 1 महीने पहले वह डोनवास जहाज पर था और टोही मिशन में शामिल था। जब उसे अजोव ब्रिगेड के लिए चुना गया तो घर में इस पर बहुत चर्चा हुई, लेकिन माँ ने हिम्मत नहीं हारी। उसके लिए एक माँ के रूप में सबसे जरूरी बात यह थी कि उसका बेटा जिंदा रहे, खुश रहे और उसके नज़दीक रहे। लेकिन रोमन ने कहा कि सैनिक में भर्ती होना उसकी मर्जी है और यह उसके लिए बहुत जरूरी है। माँ ने भी अपनी आवाज़ ऊंची की। इस पर रोमन ने माँ की आंखों में गहराई से देखा और कहा, तुम मेरी माँ हो, मुझे समझ नहीं आता कि तुम मेरी मर्जी कैसे नहीं समझ सकती। और विक्टोरिया को उसकी बात मानने पड़ी। जब वह मारियोपोल में सेवा करने गया तो माँ उदास रहने लगी। वह लगातार चिंता करती थी और जब 2022 में हमला शुरू हुआ तो वह बिल्कुल भी

0: नहीं उठ पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके हाथ पांव छीन लिए गए हों। लेकिन रोमन ने हौसला देते हुए कहा, माँ हमारा समय आ गया है। वृहद स्तर पर हमला होने से पहले उससे नए साल की छुट्टियों में जाना था, लेकिन उसे जाने नहीं दिया गया। पर वह बिना इजाजत लिए 21 घंटे गाड़ी चलाकर घर आया और अपनी माँ एवं बहन से आखिरी बार मुलाकात की। घर में रहते समय जब वह एक दोस्त के साथ बाहर जाने वाला था, तभी उसकी नानी आई। नानी ने उसे देखा और कहा, रोमचिक तुम ठीक वहीं हो जहाँ मौत का खतरा है। तब वह अपनी माँ के पास आया और बोला, तुम हीरो की माँ बनोगी। और जब वह वापस ड्यूटी पर जा रहा था तो उसने कहा, माँ तुम समझती हो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, तुम्हें हर चीज़ के लिए तैयार रहना होगा। मारियोपोल के उस भयंकर सड़क युद्ध के दौरान रोमन शहीद हो गया। माँ को इसकी खबर मिली और वह उसके शव को 7 महीने तक ढूंढती रही। रूसी सैनिकों ने मारियोपोल से मरे लोगों के शव को वापस नहीं किया था। जब जून में वे वापस चले गए, तब उनके बेटे का शव मिला। उसने उसे एक योद्धा की तरह दफनाया, बेटे से नहीं रोने का वादा किया क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि माँ रोए। जब हम ऐसे लोगों के मिशन के बारे में बात करते हैं तो हम हथियारों या ताकत के बारे बात नहीं करते। सबसे ज़रूरी चीज़ है सम्मान, इज्जत और अपने अधिकारों और अपने ज़मीन की रक्षा करने की क्षमता। माँ कहती हैं, मेरा बेटा दूसरों का मुल्क नहीं गया और किसी से कुछ नहीं लिया, उसने अपने लोगों का बचाव किया। लड़ाई के दौरान जब मारियोपोल को समुद्र से, आकाश से और तोपों से तबाह कर दिया गया, तब इस पूरे समय में वह सिर्फ 2 बार बात कर पाई। जब उसने फ़ोन किया, माँ चिल्लाई, रोमचिक रोमचिक, और उसने जवाब दिया, माँ मैं खुश हूँ कि मैं यहाँ हूँ, मैं वहीं हूँ जहाँ मेरी ज़रूरत है, जहाँ मुझे होना चाहिए। लेकिन माँ प्लीज़ उन लोगों की मदद करना जो मारियोपोल से लौट रहे हैं, आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि वे यहाँ किस दौर से गुजर रहे हैं। रोमन को आम लोगों से हमदर्दी थी। मारियोपोल के लोग अपने परिवारों के साथ 50 से 60 दिनों तक उस नरक से बचे रहे। उन्होंने वह लाइन पार कर ली जिसके आगे मौत और तकलीफें जरूर हैं, लेकिन वे असली इंसान बने रहे। उन्होंने एक दूसरे की मदद की, हमदर्दी रखी और एक दूसरे का ख्याल रखा। यही वे चीज़ें हैं जो किसी व्यक्ति को सच्चा इंसान बनाते हैं। इस तरह विक्टोरिया जानती हैं कि आत्मा की ताकत जख्मों का ना होना नहीं है, बल्कि उससे बाहर निकलने की काबिलियत है। यह अपने दर्द को ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी ताकत का जरिया बनाने की काबिलियत है। यह वहाँ रोशनी बनना है जहाँ पूरा अंधेरा लगता है, और घावों के बावजूद खुद रोशनी बनना है। श्रोताओं रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत यूक्रेन के शहीदों की माताओं की कहानी सुन रहे थे, जिसको वैटिकन न्यूज यूक्रेन से लिया गया है।
1: आज चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटिका माँ की गोद, लेखिका है अंतरा करवड़े। श्रोताओ, आज के वैज्ञानिक युग में दुनिया सिमट कर रह गई है। एक देश से दूसरे देश जाना तो आम बात हो गई है। कोई विदेश भ्रमण करने के लिए जाता है, तो कोई तीर्थाटन के लिए, कोई पढ़ने के लिए जाता है, तो कोई शरणार्थी बनकर विदेशों में पनाह ले लेता है। बहुधा लोग नौकरी के लिए अपना प्यारा देश छोड़कर विदेशों की पनाह लेते हैं और वहाँ के तौर तरीकों, भाषा और वहाँ की संस्कृति को अपना लेते हैं। उन्हें रुपयों की कोई कमी तो नहीं होती, पर अपने दोस्त यारों की कमी उन्हें जरूर खलती होगी। दूसरी ओर घर पर बैठे बूढ़े माँ बाप उन्हें देखने के लिए तरस जाते हैं और पल पल उनके लौटने की बाट जोहते हैं। हाँ, अगर फोन द्वारा संपर्क बनाए रखें तो इस व्यथा को कम किया जा सकता है। विशेषकर प्रवासी अगर बूढ़े माँ बाप के लिए अपने व्यस्त समय से चंद लम्हे निकालकर उनका हालचाल पूछ लें, वीडियो कॉल कर लें, तो यह बूढ़े माँ बाप के लिए सोने चांदी से बढ़कर मूल्यवान उपहार होगा। आशा है आज की नाटिका इस दिशा में आपका, विशेषकर प्रवासियों का मार्गदर्शन कर सके। तो लीजिए, प्रस्तुत है अंतरा करवड़े की लिखी नाटिका माँ की गोद।
2: तुम भी ना, जब देखो कुछ ना कुछ करते ही रहते हो। अभी तो साफ करके सुलाया था और अब फिर नैपी गंदी कर रखी है।
3: क्या बात है विनया, क्यों हमारे नन्हे से राजकुमार पर गुस्सा कर रही हो? आ जाओ बेटे, नानी की गोद में आ जाओ। ये मम्मी बड़ा गुस्सा करती है ना आप पर?
2: हाँ मम्मी गुस्सा करती है, मम्मी छुट्टू का ध्यान नहीं रखती है। सारे दर्द और तकलीफें भी मम्मी ही सहन करती है, फिर भी मम्मी ही सबसे खराब है। ऐसा क्यों है माँ?
3: अरे विनया बेटे, शुरुआत में थोड़ी तकलीफ होती है, अब ये इतना नन्हा सा बच्चा हर चीज के लिए तुम्हारे ऊपर ही तो निर्भर है। ऐसे में तुम ही इसे तकलीफ मान लोगी तो ये बेचारा क्या करेगा?
2: काहे का बेचारा, इसकी नानी नहीं है क्या इसके पास?
3: हाँ भाई, नानी तो है, लेकिन कितने दिनों तक? आपको आगे अपने पापा के पास, दादा दादी के पास नहीं जाना है क्या? मेरा नन्हा मुन्ना राजकुमार। विनया तू बिल्कुल ऐसी ही थी, एकदम गोल मटोल गोरी नारी, एकदम गुल गोथनी सी।
2: और विश्व भैया कैसे थे माँ?
3: विश्व, वो तो जैसे मेरा विश्व ही था, मेरा पहला बेटा, मुझे माँ की पदवी देने वाला। कितने सपने देखे थे मैंने विश्व को लेकर।
2: अब छोड़ो भी ना माँ, विश्व भैया अपना भविष्य बनाने के लिए ही तो देश छोड़कर गए हैं, कोई यूं ही तो नहीं जाता अपनों को छोड़कर, और वहां से पैसे भी तो भेजते हैं आपके लिए।
3: पैसों से अपनी ममता खरीदी जा सकती है क्या? अरे तुम्हारे पापा को और मुझे ये घर काटने को दौड़ता है। कितने अरमानों से ये इतना बड़ा 2 मंजिला मकान बनवाया था, कभी बेटा बहू और बेटी दामाद एक साथ आ जाएं, तब भी सभी के लिए ढेर सारी जगह रहे, हम हमारे नाती पोतों को खिलाया करें और...
2: माँ माँ संभालो अपने आप को माँ, देखो विश्व भैया ना सही, मैं तो हूं ना आपके साथ, क्या मेरा होना काफी नहीं है माँ?
3: ओह मैं भी कैसी माँ हूँ, महीने भर का बच्चा है तेरा और तेरे सामने क्या दुखड़ा लेकर बैठ गई। चल इसकी नाइन आ गई होगी, जल्दी से तैयार करके इसे बाहर दे दे और थोड़ी देर तू भी आराम कर ले, कल रात भर भी ये रो रो कर जागता रहा था ना?
2: हाँ माँ नींद तो बहुत आ रही है।
3: चलो आ जाओ आ जाओ राजकुमार, हमारे पास आ जाओ। अरे वहाँ बाहर कौन खड़ा है, कौन है वहाँ?
4: माँ जी मैं सोनू।
3: अरे सोनू, क्या बात है, बड़े दिनों बाद आना हुआ, और हरिराम माली कैसे हैं?
4: अच्छे हैं माँ जी, वो माँ जी मैं।
3: हाँ बोलो सोनू।
4: माँ जी ये माँ ने मिठाइयाँ भिजवाई हैं और ये विनया दीदी के छोटे राजा के लिए झबले।
3: अरे इसकी क्या ज़रूरत थी सोनू, और माँ ने भिजवाए हैं? तुम्हारी माँ की तो तबीयत खराब थी ना, तुम्हें नहीं तो कहा था पिछले 2 महीने से बिस्तर पर है?
4: हाँ माँ जी, वो बड़े भैया फॉरेन चले गए थे ना फिटर बनकर, माँ को लगता था कि आएंगे ही नहीं, 2 साल हो गए थे उनको, वो बॉन्ड भरवा लेते हैं ना वहाँ, इसलिए नहीं आ पा रहे थे।
3: तो अब आ गए तुम्हारे भैया?
4: हाँ माँ जी आ गए भैया, और अब जाएंगे भी नहीं वापस, इसी वास्ते तो माँ उठकर खड़ी हो गई फौरन।
3: अरे वाह, बड़ी भाग्यशाली है तुम्हारी माँ सोनू, और एक मैं हूँ। खैर अच्छा बैठो, ये लो विनया दीदी के छोटे राजा को खिलाओ, मैं तुम्हारे लिए लड्डू लेकर आती हूँ, और चाय तो चलती है ना तुम्हें?
4: हाँ जी ज्यादा चीनी वाली।
3: हाँ बैठो मैं अभी लाती हूँ।
2: अरे ये माँ सिसकती हुई रसोई घर की ओर क्यों दौड़ पड़ी, चुटकू भी नहीं है हाथ में। माँ माँ क्या हुआ माँ, आप रो क्यों रही हैं? जरूर छुटकू ने तकलीफ दी होगी, वो ऐसा ही है, जब देखो तब सताता रहता है। आपको पैरों में दर्द है ना, और मैं जानती हूँ उसे गोदी में रहकर घूमना अच्छा लग रहा होगा, बढ़ गया ना आपके पैरों का दर्द, ये छुटकू भी ना।
3: अरे नहीं विनया नहीं, उस नन्हे राजकुमार को कुछ मत कहो, वो तो बेचारा फरिश्ता है मेरा, कोई तकलीफ नहीं दी उसने मुझे, खेल रहा है बाहर। अब वो हरिराम माली का बेटा सोनू आया है ना, उसी के पास है।
2: सोनू आया है? अरे वाह, लेकिन माँ आप अभी क्यों रो रही थी?
3: बस ऐसे ही।
2: नहीं माँ, बोलो तो क्या हुआ है?
3: विनया, हरिराम माली का बड़ा बेटा भी 2 साल पहले विदेश गया था। कोई खोज खबर नहीं ली उसने अपने माता पिता की। उसकी माँ ने बिस्तर पकड़ लिया था। आज सोनू आया है, कह रहा है उसका भैया लौट आया। विनया, विनया कितनी खुश होगी ना उसकी माँ आज, उसे तो सारा संसार मिल गया होगा।
2: माँ, तुम क्यों इस बात को मन से लगाए बैठी हो? विदेश जाने से क्या विश्व भैया पराए हो गए हैं?
3: मैं नहीं जानती विनया, इस हालत के लिए दोषी भी तो मैं ही हूं ना।
2: ये क्या कह रही हूँ माँ?
3: हाँ विनया, तुम्हारे मामा जी कॉलेज पढ़कर ही विदेश जा बसे थे। जब मेरी शादी हुई तब उसमें भी नहीं आ सके। हाँ, उन्होंने मेरे लिए ढेर सारा सोना और जवाहरात भेजे थे। मुझे तो यही लगता था कि विदेश जाने वाला इंसान बड़ा सुखी होता है, वो इतना सारा पैसा जो कमा लेता है। मैंने भी मेरी माँ को ऐसे ही आंसू बहाते देखा था। मैं भी उनसे यही कहती थी कि माँ, बेटा पैसे तो भेजता है ना। मामा जी की बातें बताते हुए ही मैंने विश्व को बड़ा किया, उसके सामने उन्हीं का आदर्श रखा, और मेरा बेटा मेरी बात मानकर चला गया।
2: माँ, माँ ये आप क्या कह रहे हो?
3: विनया, विनया मुझसे एक वादा कर।
2: बोलो माँ।
3: विनया, हम अपने छोटे राजकुमार को विदेश के सपने नहीं दिखाएंगे, हम उसे अपने देश का सच बताएंगे। तुम उसे मेरी पीड़ा बताना विनया, तुम उसे ये बताना कि रिश्ते क्या होते हैं। हम उसे खूब पैसे वाला नहीं, खूब अच्छे संबंध निभाने वाला बनाएंगे। शायद तभी वो अपनी माँ के साथ अपनी धरती माँ के प्रति अपने कर्तव्यों को जान पाएगा। मेरी बात मानोगी ना विनया?
2: हाँ माँ, मैं ऐसा ही करूँगी माँ। तुम्हारा नाती अपने देश में ही रहेगा, अपनी माँ के पास हमेशा।
1: माँ की गोद। अभी अभी आपने वाटिकन रेडियो से यह नाटिका सुनी। इसके कलाकार थे अंतरा करवड़े, नुपुर दीक्षित और अनुराग तागड़े। इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि मनुष्य सभी स्थितियों और अवस्थाओं में मानव जीवन के सम्मान और उसकी सुरक्षा के प्रति समर्पित रहें तथा जीवन को ईश्वर का वरदान माने। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तुता हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज।

0: श्रोताओं रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत यूक्रेन के शहीदों की माताओं की कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं। हर शहीद सैनिक के नाम के पीछे सिर्फ एक उपलब्धि नहीं बल्कि उनके जीवन, विश्वास, परिवार और प्यार की कहानी भी है जो हमेशा रह जाती है। एक मानवता की कहानी, एक साहस एवं आशा की कहानी। यह यूक्रेनी सैनिक रोमन कोमलिको की मां विक्टोरिया कोमलिको की गवाही है। रोमन कोमलिको 16 मार्च 2022 को मारियोपोल की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। जब रोमन की मौत हुई तो वह सिर्फ 20 साल का था। 20 साल की उम्र कम लगती है लेकिन एक जागरूक इंसान बनने, विकसित होने और जीवन को गहराई से समझने के लिए उम्र सबसे जरूरी चीज नहीं होती। आप 20 साल की उम्र में भी आध्यात्मिक रूप से परिपक्व इंसान बन सकते हैं। सिद्धांत और विचार ही व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। जब रोमन 2 साल का था तो एक दिन वह अपनी माँ के साथ कमरे में खेल रहा था। माँ किचन गए, रास्ते में शीशे पर खुद को देखा और सोचा, जब मेरा बेटा 20 साल का होगा तो मैं कैसी होंगी? अगर तब उससे पूरी सच्चाई मालूम होती कि क्या होने वाला है तो उसका बुरा हाल होता। लेकिन आज वह अपने बेटे को धन्यवाद देती है जिसने उसे सिखाया कि इज्जत, सम्मान, सिद्धांत और विश्वास क्या होते हैं। ये वे चीजें हैं जो हमें असली इंसान बनाती हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कितनी लंबी जिंदगी जीते हैं। यह समझना जरूरी है कि दुनिया सिर्फ मैं में बंद नहीं है। हर किसी को खुद के लिए जवाब देना होगा। मैं कौन हूँ? मैं किस तरह का नागरिक हूँ? मैंने लोगों के लिए क्या किया है और मेरे कामों का आसपास रहने वालों पर क्या असर पड़ता है? यूक्रेन के लिए अपनी जान देने वाले हर एक व्यक्ति ने सबसे बढ़कर अपने परिवार, अपनी जमीन, अपने पुरखों और उन सभी चीज़ों की रक्षा की है जो उन्हें प्यारी थी। इसलिए विक्टोरिया के लिए हर शहीद सैनिक उसके बेटे के समान है और रोमन की तरह वे सभी को सम्मान एवं कृतज्ञता के साथ याद रखती हैं। उन्हें पता है कि वे यही चाहेंगे और कहेंगे, माँ यही सही है। हीरो की माँ हर सैनिक की माँ होती है। उनके कारनामे को जानकर और उनकी याद को संभालकर वह समझती है कि वह हर योद्धा की माँ है। विक्टोरिया अपने बेटे के बारे बताते हुए कहती हैं, सैनिक की सेवा में आने से पहले मेरे बेटे को इतिहास में बहुत दिलचस्पी थी। उसे दुनिया के इतिहास और यूक्रेन के इतिहास दोनों में बहुत रुचि थी। वह बहुत चिंतन करता था। 9वीं क्लास में उसने मुझसे कहा कि वह कॉलेज जाएगा लेकिन पहले वह अपने देश की रक्षा करेगा। उसने इसके लिए खुद को आध्यात्मिक एवं शारीरिक रूप से तैयार किया। वह अक्सर कहा करता था, माँ हमारे देश में युद्ध जारी है पर लोग इतने चैन से क्यों रहते हैं? उसे इस बात से दुख होता था कि 2014 से चल रहा युद्ध कई लोगों के लिए आम बात हो गई थी। 11वीं क्लास के बाद उसने कॉलेज में दाखिला लिया लेकिन सैनिक दल अजोव ब्रिगेड के लिए चयन में भाग लिया। विक्टोरिया मन ही मन उम्मीद कर रही थी कि वह पास ना हो। वास्तव में कोई भी माँ नहीं चाहेगी कि उसका बेटा जंग के बीच हो। 20 उम्मीदवारों से सिर्फ 2 ही टेस्ट पास कर पाए। गंभीर शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और मेडिकल टेस्ट के बाद उसे तुरंत मारियोपोल में सेवा के लिए भेज दिया गया। उस समय मारियोपोल में पहले से ही लड़ाई चल रही थी। उसने इसके बारे में कुछ नहीं बताया। कभी कभी वह एक हफ्ते के लिए गायब हो जाता। एक बार जब उसकी माँ बहुत घबरा गई तो उसने स्वीकार किया कि बड़े पैमाने पर हमले के लगभग 1 महीने पहले वह डोनवास जहाज पर था और टोही मिशन में शामिल था। जब उसे अजोव ब्रिगेड के लिए चुना गया तो घर में इस पर बहुत चर्चा हुई लेकिन माँ ने हिम्मत नहीं हारी। उसके लिए एक माँ के रूप में सबसे जरूरी बात यह थी कि उसका बेटा जिंदा रहे, खुश रहे और उसके नज़दीक रहे। लेकिन रोमन ने कहा कि सैनिक में भर्ती होना उसकी मर्जी है और यह उसके लिए बहुत जरूरी है। माँ ने भी अपनी आवाज़ ऊंची की। इस पर रोमन ने माँ की आंखों में गहराई से देखा और कहा, तुम मेरी माँ हो, मुझे समझ नहीं आता कि तुम मेरी मर्जी कैसे नहीं समझ सकती। और विक्टोरिया को उसकी बात मानने पड़ी। जब वह मारियोपोल में सेवा करने गया तो माँ उदास रहने लगी। वह लगातार चिंता करती थी और जब 2022 में हमला शुरू हुआ तो वह बिल्कुल भी नहीं उठ पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके हाथ पांव छीन लिए गए हों। लेकिन रोमन ने हौसला देते हुए कहा, माँ हमारा समय आ गया है। वृहद स्तर पर हमला होने से पहले उससे नए साल की छुट्टियों में जाना था, लेकिन उसे जाने नहीं दिया गया। पर वह बिना इजाजत लिए 21 घंटे गाड़ी चलाकर घर आया और अपनी माँ एवं बहन से आखिरी बार मुलाकात की। घर में रहते समय जब वह एक दोस्त के साथ बाहर जाने वाला था तभी उसकी नानी आई। नानी ने उसे देखा और कहा, रोमचिक तुम ठीक वहीं हो जहां मौत का खतरा है। तब वह अपनी माँ के पास आया और बोला, तुम हीरो की माँ बनोगी। और जब वह वापस ड्यूटी पर जा रहा था तो उसने कहा, माँ तुम समझती हो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, तुम्हें हर चीज़ के लिए तैयार रहना होगा। मारियोपोल के उस भयंकर सड़क युद्ध के दौरान रोमन शहीद हो गया। माँ को इसकी खबर मिली और वह उसके शव को 7 महीने तक ढूंढती रही। रूसी सैनिकों ने मारियोपोल से मरे लोगों के शव को वापस नहीं किया था। जब जून में वे वापस चले गए तब उनके बेटे का शव मिला। उसने उसे एक योद्धा की तरह दफनाया, बेटे से नहीं रोने का वादा किया क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि माँ रोए। जब हम ऐसे लोगों के मिशन के बारे में बात करते हैं तो हम हथियारों या ताकत के बारे बात नहीं करते। सबसे ज़रूरी चीज़ है सम्मान, इज्जत और अपने अधिकारों और अपने ज़मीन की रक्षा करने की क्षमता। माँ कहती हैं, मेरा बेटा दूसरों का मुल्क नहीं गया और किसी से कुछ नहीं लिया, उसने अपने लोगों का बचाव किया। लड़ाई के दौरान जब मारियोपोल को समुद्र से, आकाश से और तोपों से तबाह कर दिया गया तब इस पूरे समय में वह सिर्फ 2 बार बात कर पाई। जब उसने फ़ोन किया माँ चिल्लाई, रोमचिक रोमचिक, और उसने जवाब दिया, माँ मैं खुश हूँ कि मैं यहाँ हूँ, मैं वहीं हूँ जहाँ मेरी ज़रूरत है, जहाँ मुझे होना चाहिए। लेकिन माँ प्लीज़ उन लोगों की मदद करना जो मारियोपोल से लौट रहे हैं, आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि वे यहाँ किस दौर से गुजर रहे हैं। रोमन को आम लोगों से हमदर्दी थी। मारियोपोल के लोग अपने परिवारों के साथ 50 से 60 दिनों तक उस नरक से बचे रहे। उन्होंने वह लाइन पार कर ली जिसके आगे मौत और तकलीफें जरूर हैं, लेकिन वे असली इंसान बने रहे। उन्होंने एक दूसरे की मदद की, हमदर्दी रखी और एक दूसरे का ख्याल रखा। यही वे चीज़ें हैं जो किसी व्यक्ति को सच्चा इंसान बनाते हैं। इस तरह विक्टोरिया जानती हैं कि आत्मा की ताकत जख्मों का ना होना नहीं है बल्कि उससे बाहर निकलने की काबिलियत है, या अपने दर्द को ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी ताकत का जरिया बनाने की काबिलियत है। यह वहाँ रोशनी बनना है जहाँ पूरा अंधेरा लगता है, और घावों के बावजूद खुद रोशनी बनना है। श्रोताओं रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत यूक्रेन के शहीदों की माताओं की कहानी सुन रहे थे जिसको वैटिकन न्यूज यूक्रेन से लिया गया है।
1: आज चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटिका माँ की गोद, लेखिका है अंतरा करवड़े। श्रोताओ, आज के वैज्ञानिक युग में दुनिया सिमट कर रह गई है। एक देश से दूसरे देश जाना तो आम बात हो गई है। कोई विदेश भ्रमण करने के लिए जाता है तो कोई तीर्थाटन के लिए, कोई पढ़ने के लिए जाता है तो कोई शरणार्थी बनकर विदेशों में पनाह ले लेता है। बहुधा लोग नौकरी के लिए अपना प्यारा देश छोड़कर विदेशों की पनाह लेते हैं और वहाँ के तौर तरीकों, भाषा और वहाँ की संस्कृति को अपना लेते हैं। उन्हें रुपयों की कोई कमी तो नहीं होती, पर अपने दोस्त यारों की कमी उन्हें जरूर खलती होगी। दूसरी ओर घर पर बैठे बूढ़े माँ बाप उन्हें देखने के लिए तरस जाते हैं और पल पल उनके लौटने की बाट जोहते हैं। हाँ, अगर फोन द्वारा संपर्क बनाए रखें तो इस व्यथा को कम किया जा सकता है। विशेषकर प्रवासी अगर बूढ़े माँ बाप के लिए अपने व्यस्त समय से चंद लम्हे निकाल कर उनका हाल चाल पूछ लें, वीडियो कॉल कर लें, तो यह बूढ़े माँ बाप के लिए सोने चांदी से बढ़कर मूल्यवान उपहार होगा। आशा है आज की नाटिका इस दिशा में आपका, विशेषकर प्रवासियों का मार्गदर्शन कर सके। तो लीजिए प्रस्तुत है अंतरा करवड़े की लिखी नाटिका माँ की गोद।
2: ओफो छुटकू, तुम भी ना, जब देखो कुछ ना कुछ करते ही रहते हो। अभी तो साफ करके सुलाया था और अब फिर नैपी गंदी कर रखी है।
3: क्या बात है विनया, क्यों हमारे नन्हे से राजकुमार पर गुस्सा कर रही हो? आ जाओ बेटे, नानी की गोद में आ जाओ। ये मम्मी बड़ा गुस्सा करती है ना आप पर?
2: हाँ मम्मी गुस्सा करती है, मम्मी छुट्टू का ध्यान नहीं रखती है। सारे दर्द और तकलीफें भी मम्मी ही सहन करती है, फिर भी मम्मी ही सबसे खराब है। ऐसा क्यों है माँ?
3: अरे विनया बेटे, शुरुआत में थोड़ी तकलीफ होती है, अब ये इतना नन्हा सा बच्चा हर चीज के लिए तुम्हारे ऊपर ही तो निर्भर है। ऐसे में तुम ही इसे तकलीफ मान लोगी तो ये बेचारा क्या करेगा?
2: काहे का बेचारा, इसकी नानी नहीं है क्या इसके पास?
3: हाँ भाई, नानी तो है, लेकिन कितने दिनों तक? आपको आगे अपने पापा के पास, दादा दादी के पास नहीं जाना है क्या? मेरा नन्हा मुन्ना राजकुमार। विनया तू बिल्कुल ऐसी ही थी, एकदम गोल मटोल गोरी नारी, एकदम गुल गोथनी सी।
2: और विश्व भैया कैसे थे माँ?
3: विश्व, वो तो जैसे मेरा विश्व ही था, मेरा पहला बेटा, मुझे माँ की पदवी देने वाला। कितने सपने देखे थे मैंने विश्व को लेकर।
2: अब छोड़ो भी ना माँ, विश्व भैया अपना भविष्य बनाने के लिए ही तो देश छोड़कर गए हैं, कोई यूं ही तो नहीं जाता अपनों को छोड़कर। और वहां से पैसे भी तो भेजते हैं आपके लिए।
3: पैसों से अपनी ममता खरीदी जा सकती है क्या? अरे तुम्हारे पापा को और मुझे ये घर काटने को दौड़ता है। कितने अरमानों से ये इतना बड़ा 2 मंजिला मकान बनवाया था, कभी बेटा बहू और बेटी दामाद एक साथ आ जाएं, तब भी सभी के लिए ढेर सारी जगह रहे, हम हमारे नाती पोतों को खिलाया करें। और
2: माँ, माँ संभालो अपने आप को माँ। देखो विश्व भैया ना सही, मैं तो हूं ना आपके साथ, क्या मेरा होना काफी नहीं है माँ?
3: ओह मैं भी कैसी माँ हूँ, महीने भर का बच्चा है तेरा और तेरे सामने क्या दुखड़ा लेकर बैठ गई। चल इसकी नाइन आ गई होगी, जल्दी से तैयार करके इसे बाहर दे दे और थोड़ी देर तू भी आराम कर ले, कल रात भर भी ये रो रो कर जागता रहा था ना?
2: हाँ माँ नींद तो बहुत आ रही है।
3: चलो आ जाओ राजकुमार हमारे पास आ जाओ। अरे वहाँ बाहर कौन खड़ा है, कौन है वहाँ?
4: माँ जी मैं सोनू।
3: अरे सोनू क्या बात है, बड़े दिनों बाद आना हुआ, और हरिराम माली कैसे हैं?

0: इसलिए नहीं आ पा रहे थे।
1: तो अब आ गए तुम्हारे भैया?
0: हाँ माँ जी, आ गए भैया, और अब जाएंगे भी नहीं वापस। इसी वास्ते तो माँ उठकर खड़ी हो गई फौरन।
1: अरे वाह, बड़ी भाग्यशाली है तुम्हारी माँ सोनू, और एक मैं हूँ। खैर, अच्छा बैठो, ये लो, विनया दीदी के छोटे राजा को खिलाओ। मैं तुम्हारे लिए लड्डू लेकर आती हूँ, और चाय तो चलती है ना तुम्हें?
0: हाँ जी, ज्यादा चीनी वाली।
1: हाँ बैठो, मैं अभी लाती हूँ।
2: अरे, ये माँ सिसकती हुई रसोई घर की ओर क्यों दौड़ पड़ी? चुटकू भी नहीं है हाथ में। माँ, माँ, क्या हुआ माँ? आप रो क्यों रही हैं? जरूर चुटकू ने तकलीफ दी होगी। वो ऐसा ही है, जब देखो तब सताता रहता है। आपको पैरों में दर्द है ना? और मैं जानती हूँ, उसे गोदी में रहकर घूमना अच्छा लग रहा होगा। बढ़ गया ना आपके पैरों का दर्द? ये छुटकू भी ना।
1: अरे नहीं विनया, नहीं, उस नन्हे राजकुमार को कुछ मत कहो। वो तो बेचारा फरिश्ता है मेरा, कोई तकलीफ नहीं दी उसने मुझे, खेल रहा है बाहर। अब वो हरिराम माली का बेटा सोनू आया है ना, उसी के पास है।
2: सोनू आया है? अरे वाह, लेकिन माँ आप अभी क्यों रो रही थी?
1: अब बस ऐसे ही।
2: नहीं माँ, बोलो तो क्या हुआ है?
1: विनया, हरिराम माली का बड़ा बेटा भी 2 साल पहले विदेश गया था। कोई खोज खबर नहीं ली उसने अपने माता पिता की। उसकी माँ ने बिस्तर पकड़ लिया था। आज सोनू आया है, कह रहा है उसका भैया लौट आया। विनया, विनया कितनी खुश होगी ना उसकी माँ आज, उसे तो सारा संसार मिल गया होगा।
2: माँ, तुम क्यों इस बात को मन से लगाए बैठी हो? विदेश जाने से क्या विश्व भैया पराए हो गए हैं?
1: मैं नहीं जानती विनया, इस हालत के लिए दोषी भी तो मैं ही हूं ना।
2: ये क्या कह रही हो माँ?
1: हाँ विनया, तुम्हारे मामा जी कॉलेज पढ़कर ही विदेश जा बसे थे। जब मेरी शादी हुई तब उसमें भी नहीं आ सके। हाँ, उन्होंने मेरे लिए ढेर सारा सोना और जवाहरात भेजे थे। मुझे तो यही लगता था कि विदेश जाने वाला इंसान बड़ा सुखी होता है, वो इतना सारा पैसा जो कमा लेता है। मैंने भी मेरी माँ को ऐसे ही आंसू बहाते देखा था। मैं भी उनसे यही कहती थी कि माँ, बेटा पैसे तो भेजता है ना। मामा जी की बातें बताते हुए ही मैंने विश्व को बड़ा किया, उसके सामने उन्हीं का आदर्श रखा, और मेरा बेटा मेरी बात मानकर चला गया, चला गया।
2: माँ, माँ ये आप क्या कह रहे हो?
1: विनया, विनया मुझसे एक वादा कर।
2: बोलो माँ।
1: विनया, हम अपने छोटे राजकुमार को विदेश के सपने नहीं दिखाएंगे, हम उसे अपने देश का सच बताएंगे। तुम उसे मेरी पीड़ा बताना विनया, तुम उसे ये बताना कि रिश्ते क्या होते हैं। हम उसे खूब पैसे वाला नहीं, खूब अच्छे संबंध निभाने वाला बनाएंगे। शायद तभी वो अपनी माँ के साथ, अपनी धरती माँ के प्रति अपने कर्तव्यों को जान पाएगा। मेरी मेरी बात मानोगी ना विनया?
2: हाँ माँ, मैं ऐसा ही करूंगी माँ। तुम्हारा नाती अपने देश में ही रहेगा, अपनी माँ के पास हमेशा।
3: माँ की गोद। अभी अभी आपने वाटिकन रेडियो से यह नाटिका सुनी। इसके कलाकार थे अंतरा करवड़े, नुपुर दीक्षित और अनुराग तागड़े। इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।

0: लौदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय। आप सुन रहे हैं वैटिकन रेडियो। वैटिकन रेडियो के चैपल से पौत्र रोजरी माला विनती।
1: क्रूस का चिन्ह
2: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
1: प्रेरितों का धर्म सार,
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे

0: और मृतकों का न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कार्तिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारे प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब है और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
2: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेष कर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
0: आनंद के पहला भेद। गैब्रियल दूत माता मरियम को यीशु के जन्म का संदेश देते हैं,
3: मतलब संत पापा और कलीसिया के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारा अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
0: आनंद के दूसरा भेद, माता मरियम एलिजाबेथ से भेंट करती है,
2: मतलब बीमार से पीड़ित भाई बहनों के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो।
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
0: आनंद का तीसरा भेद, हमारे प्रभु जन्मते हैं।
2: मतलब विश्व शांति के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
0: आनंद का चौथा भेद, प्रभु यीशु मंदिर में चढ़ाए जाते हैं,
2: मतलब पापियों के मन फिराव के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: आनंद का पांचवा भेद, प्रभु यीशु मंदिर में पाए जाते हैं,
2: मतलब शोधक अग्नि की दुखित आत्माओं के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: कन्या कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: कुमारी मरियम की स्तुति विनती। प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त दया कर,
1: ख्रिस्त दया कर,
0: प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त हमारी सुन,
1: ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर।
0: स्वर्ग के पिता ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता,
1: हम पर दया कर।
0: पवित्र आत्मा ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: संत मरियम,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वर की पवित्र माँ,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुमारियों की पवित्र कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्त की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वरीय कृपा की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति निर्मल माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति शुद्ध माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुमारी माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: निष्कलंक माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रिय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रशंसनीय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सुसमति की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सृष्टिकर्ता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: मुक्तिदाता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति चौकस कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्तुति योग्य कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शक्तिमती कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दयालु कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मनिष्ठ कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हमारे आनंद का मूल,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पवित्र आत्मा का मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भक्ति का उत्तम पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आध्यात्मिक गुलाब,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दाऊद का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हस्तिदंत का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ण मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संधि की मंजूषा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भोर का तारा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: रोगियों का स्वास्थ्य,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पापियों की शरण,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दुखियों का दिलासा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्तियों की सहायता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्गदूतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मपुरखों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: नबियों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रेरितों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शहीदों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मवीरों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ग में उद्गृहित महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति पवित्र माला की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शांति की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमें क्षमा कर।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमारी सुन।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: हम पर दया कर।
0: हम प्रार्थना करें।
1: हे प्रभु ईश्वर, कृपा

0: मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे, क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमेन।
1: पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि मनुष्य सभी स्थितियों और अवस्थाओं में मानव जीवन के सम्मान और उसकी सुरक्षा के प्रति समर्पित रहें तथा जीवन को ईश्वर का वरदान माने। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है देवदूत प्रार्थना के पूर्व दिया गया पोप लियो 14वें का संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज।

0: रविवार को देवदूत प्रार्थना के दौरान अपने संदेश में पोप लियो 14वें ने ईश्वर के राज्य पर चिंतन किया, जो बल से नहीं बल्कि विनम्रता, धैर्य एवं प्रेम के माध्यम से चुपचाप बढ़ता है। पोप ने ख्रिस्तियों को ईश्वर के छिपे कार्यों पर भरोसा रखने और दुनिया में सुसमाचार के छोटे बीज बनने का प्रोत्साहन दिया। पोप लियो 14वें ने रविवार 19 जुलाई को कस्तेल गंदोल्फो में देवदूत प्रार्थना का पाठ किया, जिसके पूर्व उन्होंने विश्वासियों को संबोधित कर कहा,
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: प्रिय भाइयों एवं बहनों, शुभ रविवार। फिर रविवार के सुसमाचार पाठ पर चिंतन करते हुए उन्होंने कहा,
1: Dopo la parabola del seminatore, Gesù continua a parlare alle folle attraverso alcune immagini.
0: बीज बोने वाले के दृष्टांत के बाद यीशु भीड़ को संबोधित करना जारी रखते हैं। इसके लिए कई प्रतीकों का सहारा लेते हैं, अच्छा गेहूं एवं जंगली पौधे, सरसों के बीज एवं आटे में खमीर। ये तीनों छोटे दृष्टांत इतिहास में ईश्वर के राज्य के आने, मानव जीवन में उनके काम करने के तरीके और जिस तरह से वह बढ़ता फैलता एवं दुनिया को अंदर से बदलता है, उसकी याद दिलाती हैं।
1: Con questi racconti, Gesù ci mette in guardia dalla tentazione di pensare a Dio.
0: इन छवियों के द्वारा यीशु हमें उस सोच में पड़ने के प्रलोभन से बचने की चेतावनी देते हैं कि ईश्वर एक ताकतवर इंसान है, जो खुद को जबरदस्ती थोपते, जो कब्जा करते और हावी होते हैं, या जो विजय रूप में आते हैं।
1: Al contrario, Dio predilige la piccolezza.
0: इसके विपरीत ईश्वर छोटापन पसंद करते, जो उनके समझदार प्यार की निशानी है, जिसके द्वारा वे हमें स्वतंत्र छोड़ते कि हम उन्हें स्वीकार करें अथवा ना करें। उनका प्यार जंगली पौधों के बीच भी अपनी उपस्थिति महसूस कराता है, सबसे छोटे बीज की तरह छिपे और अनदेखे तरीके से काम करता है और बिना आवाज के आटे को खमीरा बना देता। पोप के अनुसार कुछ लोगों की उम्मीद है कि ईश्वर अचानक दखल देंगे और दुनिया से बुराई को तुरंत खत्म कर देंगे, लेकिन वे चेतावनी देते हैं कि ऐसी उम्मीदें ख्रिस्तीय जीवन और कलीसिया के बारे में एक गलत सोच भी बना सकती है। पोप ने कहा,
1: Fratelli sorelle, con queste parabole, Gesù ci dice qualcosa di importante sul modo in cui Dio opera nella nostra vita e nella storia.
0: भाइयों एवं बहनों, इन दृष्टांतों के द्वारा यीशु इस बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताते हैं कि ईश्वर हमारे जीवन और इतिहास में कैसे काम करते हैं। हम कभी कभी उम्मीद करते हैं कि ईश्वर कुछ शानदार करेंगे। हम चाहते हैं कि वे ऊपर से आकर बुराई के जंगली घास को तुरंत जड़ से उखाड़ दें। हम एक मजबूत एवं ताकतवर ईश्वर की कल्पना करते हैं और दुर्भाग्य से हम ख्रिस्ते होने और कलीसिया होने का अपना तरीका भी इसी छवि पर बनाते हैं। लेकिन संत पापा ने कहा कि ईश्वर का राज जंगली घास के बीच भी फैलता है, जिसके लिए हमें अपने दृष्टिकोण को सही करने की जरूरत है, ताकि हम बुराई के अंधेरे के बावजूद उगने वाली अच्छाई को पहचान सकें और जल्दबाजी में फैसले लेने से बच सकें, या सबसे छोटे बीज की तरह आता। और इसलिए इस प्रक्रिया के साथ हमें धैर्य रखने की जरूरत है, ताकि हम इसे दैनिक जीवन की छोटी छोटी चीजों और सामान्य जीवन की सादगी में पहचान सकें। यह आटे में खमीर की तरह दिखाई नहीं देता और इसलिए हम निराश ना हों और तब भी विश्वास रखें जब ऐसा लगता हो कि ईश्वर नहीं है। असल में वे हमेशा हमारे साथ हैं और उनका प्यार हमेशा हमारी मदद करने के लिए तैयार रहता है, एक व्यक्ति के रूप में और एक कलीसिया के रूप में। अपने आसपास की सच्चाइयों के बीच हमें सुसमाचार पर ध्यान देने वाला नजरिया अपनाने के लिए बुलाया गया है। अभिमानी फैसलों से, दूसरों का जल्दबाजी में विरोध किए बिना, ताकत और बल से खुद को थोपे बिना और ईश्वर के काम पर भरोसा खोए बिना, जैसा कि उस समय के कार्डिनल रत्सिंगर ने कहा था, यह खुद को बीज के तर्क के आगे झुकाने की बात है, जो सफलता और महानता का नहीं बल्कि खुद को छोटा बनाकर दूसरों की सेवा करने का है। इस तरह हम सुसमाचार के छोटे बीजों की तरह बन जाएंगे, जो अंकुरित होते और प्यार के खमीर की तरह दुनिया के आटे को बदल देते हैं। Pope ne kaha,
1: Preghiamo Maria Santissima, che ha saputo accogliere il seme della parola nella piccolezza.
0: Aaye hum dhanya kumari Maryam se prarthna kare, jo apne chotepan mein vachan ke beej ka swagat karna janti hain, ki ve hamari yatra mein hame sahara dein aur hamari madhyastha kare. Itna kahne ke baad Sant Papa ne bhakt samuday ke saath devdut prarthna ka paath kiya tatha sabhi ko apna preritik aashirwad diya.
1: Angelus Domini nunciavit Mariae.
2: Et concepite Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
0: Devdut prarthna ke uprant unhone Castel Gandolfo mein upasthit sabhi vishwasiyon ka abhivadan kiya. Unhone kaha,
1: Cari fratelli e sorelle, mentre trascorro qualche giorno di riposo,
0: Pyare bhaiyo aur behno, jab main yahan kuch din aaram kar raha hoon, main aap sabhi Castel Gandolfo ke niwasiyon ka abhivadan karta hoon aur duniya bhar se aane wale teerthyatriyon ka sahars swagat karta hoon. Uske baad unhone duniya bhar ke vibhinn hisson mein jari yuddh ke karan peedit logon ki yaad ki aur kaha,
1: Continuiamo a seguire con apprensione ciò che accade in diversi paesi.
0: Hum yuddh aur hinsa se jooj rahe alag alag deshon par chinta se nazar rakh rahe hain. Aaye hum un logon ko na bhoolein jo ladai ke karan kasht jhel rahe hain aur maut ke shikar ho rahe hain, aur hum shanti ke liye apni lagatar prarthnaon ko jari rakhein. Sant Papa ne Mother Elvira ke Chenakulo samuday ka abhivadan kiya jo Salujo mein jeevan ke utsav ke liye ekatrit hain. उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्कूल के लिए एकत्रित हुए फोकलारे नवीन परिवार मूवमेंट समर स्कूल में हिस्सा लेने वाले मैक्सिकन स्टूडेंट्स और कैथलिक वर्ल्ड फेलोशिप ग्रुप का अभिवादन किया. उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कोर्स के प्रतिभागियों को संबोधित कर उन्होंने कहा, मैं इंटरनेशनल फॉर्मेशन कोर्स में हिस्सा लेने वाले रेन्यूम क्रिस्ती के सदस्यों का अभिवादन करता हूँ. मैं उन लोगों का भी अभिवादन करता हूँ जो द लायन पिलग्रिमेज में हिस्सा ले रहे हैं, जिनके साथ सिडनी ऑस्ट्रेलिया के सहायक धर्माध्यक्ष एंटनी पार्सी भी हैं. तत्पश्चात संत पापा ने रोम की येसु के स्वर्गरोहण की चैरिटी की धर्म बहनों का अभिवादन किया और उनके साथ विभिन्न परिवारों, युवाओं एवं पल्ली दलों का भी अभिवादन किया, और अंत में उन्होंने सभी को एक शांतिपूर्ण रविवार की शुभकामनाएं दी.
1: A tutti voi auguro una serena domenica.

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। विल्लानोवा विश्वविद्यालय और उनके स्थिरता कार्यालय ने संत पापा लियो 14वें स्थिरता मेडल शुरू किया है। यह एक नया अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है जो उन लोगों को दिया जाएगा जिनके नेतृत्व ने स्थिरता, पारिस्थितिक जिम्मेदारी और अभिन्न मानव विकास को आगे बढ़ाया है। अमेरिका के अगुस्टीनियन विश्वविद्यालय विल्लानोवा ने प्रेस रिलीज में बताया कि यह मेडल उन लोगों को सम्मानित करने के लिए है जिनका काम स्थिरता का एक होलिस्टिक विजन दिखाता है, जिसमें पर्यावरण की देखभाल, सामाजिक न्याय, कमजोर आबादी की चिंता और आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधनों की जिम्मेदारी से देखभाल शामिल है। पहला संत पापा लियो 14वां स्थिरता मेडल संत पापा द्वारा कास्टेल गंडोल्फो में विल्लानोवा अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता सम्मेलन के दौरान दिया जाएगा, जो 12 से 15 अक्टूबर तक चलेगा। सम्मेलन में लगभग 300 प्रतिभागी शामिल होंगे, जिनमें शिक्षाविद, शोधकर्ता, कलीसिया के प्रतिनिधि, संस्थानों और सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के नेता शामिल हैं। एक अंतर विषयक फोरम में, जिसे बातचीत से ठोस सहयोगात्मक कार्यवाही की ओर ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। उधर मध्य अफ्रीकी गणराज्य के बंगुई बाल चिकित्सा को 19 बेड दान दिए जाएंगे। ये बेड सेफालू धर्म प्रांत के विकर जनरल फादर जुसेपे लिसियार्डी के एक दान उगाही से खरीदे गए हैं। यह उनके पुरोहित बनने की 25वीं सालगिरह के मौके पर किया गया था। उनका पुरोहिताभिषेक 14 जुलाई 2001 को हुआ था। उन्होंने इस खास सालगिरह को उदारता के काम से मनाने का फैसला लिया। उन्होंने अपने विश्वासियों, दोस्तों और रिश्तेदारों को पारंपरिक तोहफा देने के बदले बच्चों के लिए बनी अफ्रीकी अस्पताल में दान देने को कहा। इस अच्छी प्रतिक्रिया का नतीजा यह हुआ कि कुछ ही दिनों में 11,350 यूरो जमा हो गए, जिससे 19 बेड खरीदे जा सके। बच्चों के इस चिकित्सालय में बच्चों का कुपोषण विभाग भी है, जहां संत पापा फ्रांसिस 2015 में दया की असाधारण जुबली के लिए बंगुई में पवित्र दरवाजा खोला था। यह चिकित्सालय संत पापा फ्रांसिस के साथ बहुत करीब से जुड़ा है, जिन्होंने इसके नवीनीकरण और विस्तार में सहयोग दिया था। उधर ईरान में एक और रात आपसी गोलाबारी की गुजरी, जहां अमेरिका से पूरे देश में धमाकों की आवाज सुनी गई, जिनका मकसद होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों पर हमला करने की ईरानी सेना की काबिलियत को कमजोर करना था। सबसे बड़ा हमला बुशहर में हुआ, जो ईरान का एकमात्र सिविलियन न्यूक्लियर संरचनाओं वाला बंदरगाह शहर है। जवाब में तेहरान ने 2 तेल टैंकर को उड़ा दिया। यह एक ऐसा कदम था जो नौसेना नाकाबंदी से लेकर पूरे अगले भाग में हमले तक बढ़ा। IRGC ने इस घटना की जिम्मेदारी ले ली है और कहा कि जब तक अमेरिका हमला करता रहेगा, तेल और गैस का रास्ता सुरक्षित नहीं रहेगा। कुवैत और बहरीन में हवाई हमले का अलर्ट जारी है, जबकि जॉर्डन में 2 रात पहले हुए हमले में लापता 3रे अमेरिकी सैनिक की लाश मिली है। ईरान के विदेश मंत्री आरागच्ची ने एक साक्षात्कार में कहा कि उनका देश अमेरिका के साथ युद्ध तभी खत्म करेगा जब वह ताकतवर होगा, चाहे वह मिलिट्री जीत से हो या राजनयिक बढ़त से। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप रूस के खिलाफ अभी लगे आर्थिक प्रतिबंधों को ईरान तक बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। लेबनान के राष्ट्रपति आउन अमेरिका पहुंचे, जहां उन्होंने राज्य सचिव मार्को रूबियो के साथ शुरुआती बातचीत की। आज राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने की उम्मीद है। इस बीच खबर है कि दोनों लोग दक्षिणी लेबनान से इजरायली सेना को पूरी तरह हटाने और 26 जून को हस्ताक्षर किए गए संरचना समझौते को लागू करने की जरूरत पर आम सहमति पर पहुंचे। हालांकि सप्ताहांत में इजरायली हमले जारी रहे, खासकर नबातीय इलाके में।
उधर कुछ दिन पहले मेलिट और उत्तर दारफुर राज्य के बीच रुकी एक गाड़ी के पास लाशें मिली। वे मई के बीच में दक्षिण दारफुर से निकली एक बस में सफर कर रहे थे, लेकिन अल डब्बा जाते समय रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, जिससे यात्रियों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। उत्तरी सूडान के रेगिस्तान में फंसने के बाद 33 लोगों की मौत हो गई, जिनमें ज्यादातर औरतें और बच्चे थे। वे 2 महीने से ज्यादा समय से वहां फंसे हुए थे। मरने वालों में एक शिक्षिका और उसके 5 बच्चे थे। वह अपने बच्चों के साथ देश के उत्तर में पहुंचने की कोशिश कर रही थी ताकि अपने बच्चों की पढ़ाई फिर से शुरू कर सके, जो 4 साल से ज्यादा समय से चल रहे गृह युद्ध की वजह से रुकी हुई थी। परिवार वालों के मुताबिक ज्यादातर यात्री औरतें थीं और साथ ही छोटे बच्चे थे, जो रेगिस्तान में प्यास से मर गए। इस तरह जबकि लड़ाई सीमा से दूर भी दुखद घटनाओं का कारण बन रही है। सूडानी संकट काहिरा में मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देलती और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अरब और अफ्रीकी मामलों के सलाहकार मसाद बुल्लोस के बीच बातचीत का केंद्र था। विदेश मंत्री अब्देलती ने एक स्थायी युद्ध विराम हासिल करने, मानवीय मदद को मजबूत करने और सूडानी लोगों के नेतृत्व में एक सबको साथ लेकर चलने वाली राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करने की जरूरत दोहराई। अपनी ओर से वाशिंगटन ने सूडानी मुद्दे पर मिस्र के साथ साथ लीबिया, लेबनान और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के मुद्दों पर करीबी तालमेल बनाए रखने के अपने इरादे की पुष्टि की। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के स्थायी पर्यवेक्षक महाधर्माध्यक्ष बालिस्तेरो मानवाधिकार परिषद से आम लोगों की सुरक्षा के लिए एक अविलंब अपील कर रहे हैं। सेव द चिल्ड्रन संगठन ने बताया कि एल ओबेद में हिंसा बढ़ने की वजह से पिछले 2 हफ्तों में 5,500 से ज्यादा बच्चों को उनके घरों से निकाल दिया गया है। शहर और आसपास के इलाकों में बेघर हुए लोगों की संख्या अब 11,000 से ज्यादा हो गई है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि मनुष्य सभी स्थितियों और अवस्थाओं में मानव जीवन के सम्मान और उसकी सुरक्षा के प्रति समर्पित रहें तथा जीवन को ईश्वर का वरदान माने। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है देवदूत प्रार्थना के पूर्व दिया गया पोप लियो 14वें का संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तुत होता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज।

0: रविवार को देवदूत प्रार्थना के दौरान अपने संदेश में पोप लियो 14वें ने ईश्वर के राज्य पर चिंतन किया, जो बल से नहीं बल्कि विनम्रता, धैर्य एवं प्रेम के माध्यम से चुपचाप बढ़ता है। पोप ने ख्रिस्तियों को ईश्वर के छिपे कार्यों पर भरोसा रखने और दुनिया में सुसमाचार के छोटे बीज बनने का प्रोत्साहन दिया। पोप लियो 14वें ने रविवार 19 जुलाई को कस्तेल गंदोल्फो में देवदूत प्रार्थना का पाठ किया, जिसके पूर्व उन्होंने विश्वासियों को संबोधित कर कहा,
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: प्रिय भाइयों एवं बहनों, शुभ रविवार। फिर रविवार के सुसमाचार पाठ पर चिंतन करते हुए उन्होंने कहा,
1: Dopo la parabola del seminatore, Gesù continua a parlare alle folle attraverso alcune immagini.
0: बीज बोने वाले के दृष्टांत के बाद यीशु भीड़ को संबोधित करना जारी रखते हैं। इसके लिए कई प्रतीकों का सहारा लेते हैं, अच्छा गेहूं एवं जंगली पौधे, सरसों के बीज एवं आटे में खमीर। ये तीनों छोटे दृष्टांत इतिहास में ईश्वर के राज्य के आने, मानव जीवन में उनके काम करने के तरीके और जिस तरह से वह बढ़ता फैलता एवं दुनिया को अंदर से बदलता है, उसकी याद दिलाती हैं।
1: Con questi racconti, Gesù ci mette in guardia dalla tentazione di pensare a Dio.
0: इन छवियों के द्वारा यीशु हमें उस सोच में पड़ने के प्रलोभन से बचने की चेतावनी देते हैं कि ईश्वर एक ताकतवर इंसान है, जो खुद को जबरदस्ती थोपते, जो कब्जा करते और हावी होते हैं या जो विजय रूप में आते हैं।
1: Al contrario, Dio predilige la piccolezza.
0: इसके विपरीत ईश्वर छोटापन पसंद करते, जो उनके समझदार प्यार की निशानी है, जिसके द्वारा वे हमें स्वतंत्र छोड़ते कि हम उन्हें स्वीकार करें अथवा ना करें। उनका प्यार जंगली पौधों के बीच भी अपनी उपस्थिति महसूस कराता है, सबसे छोटे बीज की तरह छिपे और अनदेखे तरीके से काम करता है और बिना आवाज के आटे को खमीरा बना देता। पोप के अनुसार कुछ लोगों की उम्मीद है कि ईश्वर अचानक दखल देंगे और दुनिया से बुराई को तुरंत खत्म कर देंगे, लेकिन वे चेतावनी देते हैं कि ऐसी उम्मीदें ख्रिस्ते जीवन और कलीसिया के बारे में एक गलत सोच भी बना सकती है। पोप ने कहा,
1: Fratelli sorelle, con queste parabole, Gesù ci dice qualcosa di importante sul modo in cui Dio opera nella nostra vita e nella storia.
0: भाइयों एवं बहनों, इन दृष्टांतों के द्वारा यीशु इस बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताते हैं कि ईश्वर हमारे जीवन और इतिहास में कैसे काम करते हैं। हम कभी कभी उम्मीद करते हैं कि ईश्वर कुछ शानदार करेंगे। हम चाहते हैं कि वे ऊपर से आकर बुराई के जंगली घास को तुरंत जड़ से उखाड़ दें। हम एक मजबूत एवं ताकतवर ईश्वर की कल्पना करते हैं और दुर्भाग्य से हम ख्रिस्ते होने और कलीसिया होने का अपना तरीका भी इसी छवि पर बनाते हैं। लेकिन संत पापा ने कहा कि ईश्वर का राज जंगली घास के बीच भी फैलता है, जिसके लिए हमें अपने दृष्टिकोण को सही करने की जरूरत है, ताकि हम बुराई के अंधेरे के बावजूद उगने वाली अच्छाई को पहचान सकें और जल्दबाजी में फैसले लेने से बच सकें, या सबसे छोटे बीज की तरह आता। और इसलिए इस प्रक्रिया के साथ हमें धैर्य रखने की जरूरत है, ताकि हम इसे दैनिक जीवन की छोटी छोटी चीजों और सामान्य जीवन की सादगी में पहचान सकें। यह आटे में खमीर की तरह दिखाई नहीं देता और इसलिए हम निराश ना हों और तब भी विश्वास रखें जब ऐसा लगता हो कि ईश्वर नहीं है। असल में वे हमेशा हमारे साथ हैं और उनका प्यार हमेशा हमारी मदद करने के लिए तैयार रहता है, एक व्यक्ति के रूप में और एक कलीसिया के रूप में। अपने आसपास की सच्चाइयों के बीच हमें सुसमाचार पर ध्यान देने वाला नजरिया अपनाने के लिए बुलाया गया है। अभिमानी फैसलों से, दूसरों का जल्दबाजी में विरोध किए बिना, ताकत और बल से खुद को थोपे बिना और ईश्वर के काम पर भरोसा खोए बिना, जैसा कि उस समय के कार्डिनल रत्सिंगर ने कहा था, या खुद को बीज के तर्क के आगे झुकाने की बात है, जो सफलता और महानता का नहीं बल्कि खुद को छोटा बनाकर दूसरों की सेवा करने का है। इस तरह हम सुसमाचार के छोटे बीजों की तरह बन जाएंगे, जो अंकुरित होते और प्यार के खमीर की तरह दुनिया के आटे को बदल देते हैं। Pope ne kaha,
1: Preghiamo Maria Santissima, che ha saputo accogliere il seme della parola nella piccolezza.
0: Aye hum dhanya kumari Mariam se prarthna kare, jo apne chote pan mein vachan ke beej ka swagat karna janti hain, ki ve hamari yatra mein hame sahara de aur hamari madhyastha kare. Itna kahne ke baad Sant Papa ne bhakt samuday ke saath devdut prarthna ka paath kiya tatha sabhi ko apna preritik aashirwad diya.
1: Angelus Domini nunciavit Mariae.
2: Et concepite Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
0: देवदूत प्रार्थना के उपरांत उन्होंने कस्टेल गंडोल्फो में उपस्थित सभी विश्वासियों का अभिवादन किया. Unone kaha,
1: cari fratelli e sorelle, mentre trascorro qualche giorno di riposo,
0: piare bhaiyo e behno, jab main yahan kuch din aaram kar raha hu, main aap sabhi Castel Gandolfo ke niwasiyon ka abhivadan karta hu aur duniya bhar se aane wale teerthyatriyon ka sahars swagat karta hu. Uske baad unhone duniya bhar ke vibhinn hisson mein jari yuddh ke karan peedit logon ki yaad ki aur kaha,
1: continuiamo a seguire con apprensione ciò che accade in diversi paesi.
0: Hum yuddh aur hinsa se jooj rahe alag alag deshon par chinta se nazar rakh rahe hain. Aaye hum un logon ko na bhule jo ladai ke karan kasht jhel rahe hain aur maut ke shikar ho rahe hain, aur hum shanti ke liye apni lagatar prarthnaon ko jari rakhein. Sant Papa ne Mother Elvira ke Chenakulo samuday ka abhivadan kiya jo Salujo mein jeevan ke utsav ke liye ekatrit hain. उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्कूल के लिए एकत्रित हुए फोकलारे नवीन परिवार मूवमेंट, समर स्कूल में हिस्सा लेने वाले मैक्सिकन स्टूडेंट्स और कैथलिक वर्ल्ड फेलोशिप ग्रुप का अभिवादन किया. उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कोर्स के प्रतिभागियों को संबोधित कर उन्होंने कहा, मैं इंटरनेशनल फॉर्मेशन कोर्स में हिस्सा लेने वाले रेन्यूम क्रिस्ती के सदस्यों का अभिवादन करता हूँ. मैं उन लोगों का भी अभिवादन करता हूँ जो द लायन पिलग्रिमेज में हिस्सा ले रहे हैं, जिनके साथ सिडनी ऑस्ट्रेलिया के सहायक धर्माध्यक्ष एंटनी पार्सी भी हैं. तत्पश्चात संत पापा ने रोम की येसु के स्वर्गरोहण की चैरिटी की धर्म बहनों का अभिवादन किया और उनके साथ विभिन्न परिवारों, युवाओं एवं पल्ली दलों का भी अभिवादन किया, और अंत में उन्होंने सभी को एक शांतिपूर्ण रविवार की शुभकामनाएं दी.
1: A tutti voi auguro una serena domenica.

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। विल्लानोवा विश्वविद्यालय और उनके स्थिरता कार्यालय ने संत पापा लियो 14वें स्थिरता मेडल शुरू किया है। यह एक नया अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है जो उन लोगों को दिया जाएगा जिनके नेतृत्व ने स्थिरता, पारिस्थितिक जिम्मेदारी और अभिन्न मानव विकास को आगे बढ़ाया है। अमेरिका के अगुस्टीनियन विश्वविद्यालय विल्लानोवा ने प्रेस रिलीज में बताया कि यह मेडल उन लोगों को सम्मानित करने के लिए है जिनका काम स्थिरता का एक होलिस्टिक विजन दिखाता है, जिसमें पर्यावरण की देखभाल, सामाजिक न्याय, कमजोर आबादी की चिंता और आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधनों की जिम्मेदारी से देखभाल शामिल है। पहला संत पापा लियो 14वां स्थिरता मेडल संत पापा द्वारा कास्टेल गंडोल्फो में विल्लानोवा अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता सम्मेलन के दौरान दिया जाएगा, जो 12 से 15 अक्टूबर तक चलेगा। सम्मेलन में लगभग 300 प्रतिभागी शामिल होंगे, जिनमें शिक्षाविद, शोधकर्ता, कलीसिया के प्रतिनिधि, संस्थानों और सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के नेता शामिल हैं। एक अंतर विषयक फोरम में, जिसे बातचीत से ठोस सहयोगात्मक कार्यवाही की ओर ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। उधर मध्य अफ्रीकी गणराज्य के बंगुई बाल चिकित्सा को 19 बेड दान दिए जाएंगे। ये बेड सेफालू धर्म प्रांत के विकर जनरल फादर जुसेपे लिसियार्डी के एक दान उगाही से खरीदे गए हैं। यह उनके पुरोहित बनने की 25वीं सालगिरह के मौके पर किया गया था। उनका पुरोहिताभिषेक 14 जुलाई 2001 को हुआ था। उन्होंने इस खास सालगिरह को उदारता के काम से मनाने का फैसला लिया। उन्होंने अपने विश्वासियों, दोस्तों और रिश्तेदारों को पारंपरिक तोहफा देने के बदले बच्चों के लिए बनी अफ्रीकी अस्पताल में दान देने को कहा। इस अच्छी प्रतिक्रिया का नतीजा यह हुआ कि कुछ ही दिनों में 11,350 यूरो जमा हो गए, जिससे 19 बेड खरीदे जा सके। बच्चों के इस चिकित्सालय में बच्चों का कुपोषण विभाग भी है, जहां संत पापा फ्रांसिस 2015 में दया की असाधारण जुबली के लिए बंगुई में पवित्र दरवाजा खोला था। यह चिकित्सालय संत पापा फ्रांसिस के साथ बहुत करीब से जुड़ा है, जिन्होंने इसके नवीनीकरण और विस्तार में सहयोग दिया था। उधर ईरान में एक और रात आपसी गोलाबारी की गुजरी, जहां अमेरिका से पूरे देश में धमाकों की आवाज सुनी गई, जिनका मकसद होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों पर हमला करने की ईरानी सेना की काबिलियत को कमजोर करना था। सबसे बड़ा हमला बुशहर में हुआ, जो ईरान का एकमात्र सिविलियन न्यूक्लियर संरचनाओं वाला बंदरगाह शहर है। जवाब में तेहरान ने 2 तेल टैंकर को उड़ा दिया। यह एक ऐसा कदम था जो नौसेना नाकाबंदी से लेकर पूरे अगले भाग में हमले तक बढ़ा। IRGC ने इस घटना की जिम्मेदारी ले ली है और कहा कि जब तक अमेरिका हमला करता रहेगा, तेल और गैस का रास्ता सुरक्षित नहीं रहेगा। कुवैत और बहरीन में हवाई हमले का अलर्ट जारी है, जबकि जॉर्डन में 2 रात पहले हुए हमले में लापता 3रे अमेरिकी सैनिक की लाश मिली है। ईरान के विदेश मंत्री आरागच्ची ने एक साक्षात्कार में कहा कि उनका देश अमेरिका के साथ युद्ध तभी खत्म करेगा जब वह ताकतवर होगा, चाहे वह मिलिट्री जीत से हो या राजनयिक बढ़त से। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप रूस के खिलाफ अभी लगे आर्थिक प्रतिबंधों को ईरान तक बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। लेबनान के राष्ट्रपति आउन अमेरिका पहुंचे, जहां उन्होंने राज्य सचिव मार्को रूबियो के साथ शुरुआती बातचीत की। आज राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने की उम्मीद है। इस बीच खबर है कि दोनों लोग दक्षिणी लेबनान से इजरायली सेना को पूरी तरह हटाने और 26 जून को हस्ताक्षर किए गए संरचना समझौते को लागू करने की जरूरत पर आम सहमति पर पहुंचे। हालांकि सप्ताहांत में इजरायली हमले जारी रहे, खासकर नबातीय इलाके में।
उधर कुछ दिन पहले मेलिट और उत्तर दारफुर राज्य के बीच रुकी एक गाड़ी के पास लाशें मिली। वे मई के बीच में दक्षिण दारफुर से निकली एक बस में सफर कर रहे थे, लेकिन अल डब्बा जाते समय रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, जिससे यात्रियों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। उत्तरी सूडान के रेगिस्तान में फंसने के बाद 33 लोगों की मौत हो गई, जिनमें ज्यादातर औरतें और बच्चे थे। वे 2 महीने से ज्यादा समय से वहां फंसे हुए थे। मरने वालों में एक शिक्षिका और उसके 5 बच्चे थे। वह अपने बच्चों के साथ देश के उत्तर में पहुंचने की कोशिश कर रही थी ताकि अपने बच्चों की पढ़ाई फिर से शुरू कर सके, जो 4 साल से ज्यादा समय से चल रहे गृह युद्ध की वजह से रुकी हुई थी। परिवार वालों के मुताबिक ज्यादातर यात्री औरतें थीं और साथ ही छोटे बच्चे थे, जो रेगिस्तान में प्यास से मर गए। इस तरह जबकि लड़ाई सीमा से दूर भी दुखद घटनाओं का कारण बन रही है। सूडानी संकट काहिरा में मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देलती और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अरब और अफ्रीकी मामलों के सलाहकार मसाद बुल्लोस के बीच बातचीत का केंद्र था। विदेश मंत्री अब्देलती ने एक स्थायी युद्ध विराम हासिल करने, मानवीय मदद को मजबूत करने और सूडानी लोगों के नेतृत्व में एक सबको साथ लेकर चलने वाली राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करने की जरूरत दोहराई। अपनी ओर से वाशिंगटन ने सूडानी मुद्दे पर मिस्र के साथ साथ लीबिया, लेबनान और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के मुद्दों पर करीबी तालमेल बनाए रखने के अपने इरादे की पुष्टि की। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के स्थायी पर्यवेक्षक महाधर्माध्यक्ष बालिस्तेरो मानवाधिकार परिषद से आम लोगों की सुरक्षा के लिए एक अविलंब अपील कर रहे हैं। सेव द चिल्ड्रन संगठन ने बताया कि एल ओबेद में हिंसा बढ़ने की वजह से पिछले 2 हफ्तों में 5,500 से ज्यादा बच्चों को उनके घरों से निकाल दिया गया है। शहर और आसपास के इलाकों में बेघर हुए लोगों की संख्या अब 11,000 से ज्यादा हो गई है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।